0: রাখা ছাড় বেপাতা ভারতের বিদেশি নাগরিক রাজ্যসভা ভাঙা বাড়ি ছিনিতমূলক ভারত দিয়েছেন। বিভাগ কে অনুসার ভারত কা 199 নাগরিক বেপাতা ভাগা ছান এসে বাহির কে অস্ট্রেলিয়া কা 33, বেলারুস কা 2, কানাডা কা 30, চীন কা 37, বিনিয়ত মান কা 1, ইস্টোনিয়া কা 2, কোরিয়া কা 9 পর্যটক হারাগা ছান গাড়ি মে পড়ে নেপাল কা 188 পর্যটক বেপাতা ভাগা ছান। বিভাগ কে অনুসার বেপাতা হুমে 161 পুরুষরা 27, মহিলা রেখা ছান বেপাতা হুমে বিদেশি পর্যটক সহযোগিতা লাগি সহযোগিতা রুগ্ন গায়িকার কৈলাস মান সরোবর তথা গোসাইকুণ্ড ঘুম গায়িকা নেপালী রেখক বিভাগ কা সূচনা অধিকারী বতায়কা ছান। রাষ্ট্রপাক কেন্দ্রীয় সদস্যর প্রধানমন্ত্রী বালিন সাহক সচিবালয় সদস্য ভয়ক দাবি গত সরকারি কারণে অনুগমন করে ব্যক্তি চক্র করে কাছেন অনুগমন গদে আসনগালিকা পুজো পাচ্ছে ঝাটাক হলদিবাড়ি গালিকা একা 26 বর্ষ সুজন বিশ্বকর্মা চক্র করে কাছেন সরকারি কারণে শৈক্ষিক সংস্থা তথা সংঘ সংস্থা মা ধমকিপূর্ণ শৈলী মা ব্যবহার করে কা অন্য চক্র গড়ি প্রহরে 5 দিন কু নিয়ত থাক করে কোছ প্রহরিকা অনুসার বিশ্বকর্মা মা আসুসতা রোধ দাস রাষ্ট্রপা কু নেতা ভয় করা প্রধানমন্ত্রী কো সচিবালয় মা রহে কো বাতায় পাচ্ছে সরকারি কারণে মা প্রবেশ রা সার্বজনিক সরকার কা বৈঠক হরু মা পহুচ পায়কা থিয়ে প্রধানমন্ত্রী কো সচিবালয় সদস্য ভয় কো বাতায় পাচ্ছে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে উন্নয়ন অনুগমন লাগি গাড়ি সমিতি উপলব্ধ করা সরকারি গাড়ি নিয়ে সরকারি কার্যালয়ে অনুগমন লাগি পুজোটা অন্য হলদিবাড়ি গাঁপালিকা পুজোর সরকার পাশে চক্র করে
1: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
2: कालीनाग बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 18 वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना। यस सहकारी संस्थाको मिति 2083 साल भदौ 8 गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 18 वार्षिक साधन सभा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन 2082 बमोजिम क्षेत्रगत रूपमा तपसिलको मिति समय र स्थानमा तपसिलका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले सो साधन सभामा सम्पूर्ण शेर सदस्य ज्यूहरूलाई आफ्नो पाइपर्ने स्थानमा सक्रिय एवं अनिवार्य बारे उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साधारण सभाका प्रस्तावहरू संचालक समितिको आर्थिक वर्ष 2082-83 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आर्थिक वर्ष 2082-83 वार्षिक प्रतिवेदन पारित लेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रतिवेदन सहित वित्तीय विवरण पारित आर्थिक वर्ष 2083-84 लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित आर्थिक वर्ष 2083-84 वार्षिक अनुमानित आय व्यय विवरण बजेट प्रस्तुत र पारित आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण विनियम तथा कार्यविधिहरू स्वीकृत तथा संशोधन गर्ने संचालक समितिलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा साधन सभामा उपस्थित सदस्य मध्ये बहुमत सदस्यले पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई निर्णय गर्ने सम्बन्धमा साधारण सभाको माइम्युट बन्द गर्ने र शेयर सदस्य मध्येबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने र अन्य आवश्यक प्रस्तावहरू सम्बन्धमा क्षेत्रीय सभाको मिति समय र स्थान 2083 साल असोज 7 गते बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म सभा उद्घाटन श्री कालीनाग मन्दिरको हल मध्याह 12 बजेदेखि 4:30 सम्म छहरा चौतारो मलेपुमा मलेको टोलका सबै र दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म भदौरे दुधडिली प्रतीक्षालयमा भदौरे कात्तिकी कालीमाटीका शिर सदस्यहरूका लागि असोज 8 गते बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म क्लासिकल दरबार पार्टी प्यालेस जडीबुटी काठमाडौँमा काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका शेर सदस्यहरूका लागि असोज 8 गते बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म वडा नम्बर 9 को प्रांगणमा साबिक सुनराती गाविसका माथिलो टोल का शेर सदस्यहरूका लागि सोही दिन बिहान 8:30 देखि 11 बजेसम्म सामुदायिक भवन पिपल बोटमा मार्सी ठिरा काउली पोखरी नामथाजोरका सदस्यका लागि मध्याह बाह्र बजेदेखि 3:30 सम्म सोती बजारमा थुन्का मकैबारी भट्टेरीका शेर सदस्यहरूका लागि मध्याह 12:30 देखि 4 बजेसम्म मजुवा आधारभूत विद्यालयमा माने भट्टेरी चिसापानी ढुङ्गी निवारी भवटिनीका सदस्यका लागि असोज 10 गते बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म समापन सभा कालीनाथ मन्दिरको हल साबिक सुनखानी वडा नम्बर 1, 2 र अन्य केन्द्रमा छुट भएका सदस्यहरू तथा छनौट भएका प्रतिनिधिहरू पुनश्च साधु सभामा उपस्थित हुने शेर सदस्यलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। नागेका ऋणी र 2083 असार मुसान्तसम्म नियमित बचत नगरेका सदस्यलाई साधारण सभामा उपस्थित गराइने छैन। सदस्य पहिचान फारम भर्न छुटेका सदस्यज्यूहरूले 2 प्रति फोटो राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। पर्वत अधिकारी सचिव कालीनाग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालिङचोक गाउँपालिका 8 सुनखानी दोलाखा